0: ते सुरु अनि बिदन अनि नाच मी दला लाफिया तो मत मनि मिदन गे रुदु वन दे सन्ना बोज म दला लाफिया सबा कति मी दसन ने दसो वन सन्ना
1: नाच ना वाला जुरे न बने